सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगिया नामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे समस्ती बेपूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सुरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सुरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सोतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं शनाने नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा साइदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूप अनुपे अरूपे समस्तोल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं परोश पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ती निदाने नमस्त्वं नरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चर्पण छंद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत कर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मांत्र मान देव अपेव आद्योदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख उदार पुरख उदार मूर्त आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैलो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूं न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे अनेक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक
खेल खेलिया खेल खेलन अंत को फिर एक। देव पेव ना जान ही जे वेद और कतेब, रूप रंग ना जात पात सो जाने कह जेब। तात मात ना जात जाकर जन्म मरण विहीन, चक्कर बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन। लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जे जाप, आद देव अनाद मूर्त था प्यो सवै जे थाप। परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रच्यो सुजम पव गण पंजनहार। कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख्या देश, धर्म ताम सो परम रहत अपूत लख्या पेश। अंग राग ना रंग जाके जात पात ना नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम। आप रूपा मीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूपया सूत। अंगहीना भंग नातम एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार। सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख, सर्व शास्त्र ना जानही जे रूप रंग अर रेख। परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित, कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवही वो चित। मद पार छंद तुवै प्रसाद, गुणगन उदार महिमा अपार। आसन अपंग उपमा अनंग, अनपौ प्रकाश निस्दन अनास। आजान बहो शाहान शाहो, राजान राज पानान पान। देवान देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल। रंकान रंक कालान काल, अनपूत अंग आबा अपंग। गत मित अपार गुणगन उदार, मुनगन प्रणाम निरपय निकाम। अत दुत प्रचंड मित गत अखंड, अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म। सर्वा प्रणाडय अंडड बाडय, चाचरी छंद त्वै प्रसाद। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियंग करियंग निरनामे अकामे। पुजंग प्रयात छंद, चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता। चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने, चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भरती। चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले, चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे। चतर चक्कर माने है चतर चक्कर दाने है, चाचरी छंद। ना सत्रह ना मित्रह ना परमंग ना पितरह, ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाये। ना चित्रह ना मित्रह परे हैं पवित्रह, प्रथिसह अधिसह अदृश्य अकृश्य। भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते, के अछज देसै के अबिज पेसै। के आ गंज करमै के आ पंज भरमै, के आ पिज लोकै के आ दित सोकै। के अवधूत बरनै के विभूत करनै,

अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है, अजीजुल निवाज है अग्नि मुलुख राज है, निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है, परभुक्त प्रभा है।

अगादे सुभं सर्व भागे सो सर्वा अनरागे त्रिभुगत स्वरूप है अशिज है अछूत है के नरकंक प्रणास है प्रीत्यल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है या नंग है या अपेख है या लेख है अपर्म है या कर्म है या अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है या तूत है अनास है उदास है अतंध है या बंद है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदिख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजाद है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमार्थं परमार्थे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अन

निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रवाह है अजय है अजा है। भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है। हमेशल सलाम है सता समस्तल अकाम है। हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसल चिराग है। के कामल करीम है के राज करहीम है। के रोजी दहिंद है के राज करहिंद है। करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है। गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है। हरीफुल शिकान है हिरासुल फिकान है। कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है। अगंजल गनीम है रिजाय करहीम है। समस्तल जुवा है के साहिब के राह है। के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है। के सर्बल गवान है हमेशल रवान है। तमामल तमीज है समस्तल अजीज है। परम परम ईश है समस्तल अदीश है। अदेशल अलेख है अमेशल अपेख है। जमील जमाल है अमीकल इमा है। करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है। के अचलंग प्रकाश है कमित्तो सुवास है। के अजब स्वरूप है कमित्तो विभूत है। के अमित्तो पसा है के आत्म प्रवाह है। के अचलंग अनंग है के मित्तो भंग है। मद पार छंद त्वे प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम। हर भर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम। हर नर अखंड बर नर अमंड अन पाव्या नास मुन मन प्रकाश। गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम अनशिज अंग आसन या भंग। उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अपंड। जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपव अनास त्रितर तुरास। आजान बाहो एक सदाहो ओवंकार आद कथनी अनाद। खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम। अनछ जगात आज जना बात अन झंझ गात अन रंज बात। अन टुट भंडार अन ठट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म। अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वे प्रसाद।

0: तृत के तरण है जग के करण है, मन मान्य है जग जान्य है, सर्वं पर है सर्वं कर है, सर्व पास्य है सर्वनाश्य है, करणाकार है विश्वंपर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है खलखंडस है, परते पर है करणाकर है, अजप्पा जप है थप्पा थप है, अकृता कृत है मृता मृत है, अमृता मृत है, करणाकृत है अकृता कृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत है मृता मृत है, अजवाकृत है मृता मृत है, नरनायक है खलकायक है, विश्वंपर है करणालय है, नृपनायक है स्वरूपायक है, पहुपंजन है अर्गंजन है, रिपतापन है जप जपन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है, परमात्म है सर्व आत्म है, आत्म बस है जस के जस है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो त्यान त्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज पोजे, नमो पान पाने, नमो कलय कर्ता, नमो सात रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो यास यासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद, अजय अलय अपय अभय, अपू अजु अनास पास, अनास आकाश, अगंज पंज, अलख पख, अकाल दयाल, अलेख पेख, अनाम काम, अगा अठा, अनाथे प्रमाथे, अजोनी अमोनी, नारागे नरंगे, नरूपे नरेखे, अकर्मं अपर्मं अगंजे अलेखे, पुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजलु अनामे समस्तुल निवासे, निरकामं बेपूते समस्तल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं बेपूते, सदा सहिदानंद सतरंग प्रणासी, करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजाय बेपूते गजाय गगनी में, हरियं करियं करीमल रही में, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते, सुजं भव सुवं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं बेपूते।
1: We now have a kirtan called Ram Ram Bol Bol.

ओम श्री साईराम। परम श्रद्धेय भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूं कि इस मंगल अवसर पर मैं भक्ति के कुछ स्वर पुष्प बाबा के चरणों में अर्पण कर रही हूं। सबसे पहले राग यमन में मैं मंगलदीप प्रज्वलित करती हूं। तू प्रेम का सागर बन जा, तू प्रेम का सागर बन जा, मैं लहर लहर खो जाऊं, मैं मंगलदीप जलाऊं।

अब एक संत मीराबाई का भजन प्रस्तुत कर रही हूं। राणा ने विष का प्याला भेजा है मीरा के लिए और मीरा कहती है,

0: you.
1: Very nice, very soulful. Dear listeners, we are talking to Deep Raj Rai, a 12-year-old singer from Gangtok Sikkim. और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि दीप राज राय ने इंडियाज गॉट टैलेंट में सबसे पहले यही गाना गाया था इस आलाप के साथ और इसके बाद भजन गाया था. तो आप बताइए, आपने ये गाना क्यों चुना? Was there a reason that you decided to pick this particular bhajan to sing at India's Got Talent?
0: मेरा जो एक सपना था और आपको मैंने पहले ही बताया, और मैं स्वामी का बहुत बड़ा भक्त हूँ.
1: अच्छा, तो मैं आप 12 साल के हो, आप बहुत बड़े भक्त हो, छोटे से हो.
0: और जी, मैं स्वामी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे भी जो मोमेंट्स थे जब स्वामी ने मुझे हेल्प किया.
1: अच्छा,
0: और मुझे इसीलिए मुझे एक सोच आया कि मैं स्वामी का भजन फर्स्ट में गाऊं.
1: अच्छा, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हो आप बाबा के इतने बड़े भक्त और स्वामी ने आपको बहुत समय मदद की, आपकी सहायता की, क्या हुआ था?
0: जब भी मैं कल भी गा रहा था तो बहुत मेरे गले पे थोड़ा सा बैठ गया था, तभी मैंने स्वामी को प्रे किया, स्वामी प्लीज सिंग थ्रू मी, और उन्होंने मुझको बहुत हेल्प किया.
1: अच्छा, prior to your joining that competition, how did you develop such faith in Swami? Did something happen that told you that, you know, you really could depend on Swami for help and you wanted to pick his bhajan for the first round?
0: Yeah, it was my school. My school.
1: Which is the Sai Gurukul?
0: Ji, jo Sai Gurukul hai. Mere sab bhajans hai, jo roz hamare school mein bhajan hota hai. तो मैं मेरे स्कूल से भी मुझको बहुत प्रेरणा मिलता है, तो मेरा फर्स्ट क्रेडिट मेरे स्कूल को जाता है.
1: अच्छा, आपको वहाँ गाना कौन सिखाता है? सो दीप राज इज टेलिंग अस दैट द क्रेडिट फॉर हिज टैलेंट फर्स्ट गोज टू हिज स्कूल विच इज द साई गुरुकुल इन गैंगटॉक सिक्किम. सो हु टीचेस यू म्यूजिक देयर?
0: आवर स्कूल ओनली टीचर्स मी.
1: यू हैव अ म्यूजिक सर और म्यूजिक मैम? व्हाट्स हिज और हर नेम?
0: गीता शर्मा. एंड नो बट all our teachers, they all teaches us singing bhajan, but they are the main who teaches us.
1: Very nice. So have you been a Balvikas student? आपने Balvikas attend किया बचपन से?
0: जी.
1: मजा आता है Balvikas में?
0: जी.
1: You enjoy it a lot, huh?
0: Yeah.
1: Okay. दीपराज, आप हमें बताइए, आपने कौन कौन से जो भी गाने गाए, कैसे चुने? आपने एक बहुत अच्छा गाना गाया था मूवी का, आस पास है खुदा, वो थर्ड राउंड में आपने इंडियाज गॉट टैलेंट में गाया था.
0: जी.
1: आपने किस बेसिस पे केसरिया बालमवा या मितवा किस बेस पे चुना थे गाने?
0: एक्चुअली आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर, सो मुझे पता नहीं है.
1: अच्छा, तो किसने, पापा ने डिसाइड किया?
0: नहीं, हमारे उधर टीचर होते हैं, म्यूजिक टीचर, सो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये गाओ.
1: अच्छा, इंडियाज गॉट टैलेंट में म्यूजिक टीचर थे. ओके, सो वी जस्ट हर्ड फ्रॉम दीप राज दैट द चॉइस ऑफ सॉन्ग्स दैट ही पुट टुगेदर फॉर सब्सिक्वेंट टू हिज फर्स्ट भजन सिंगिंग वर सॉर्ट ऑफ सजेस्टेड बाय द म्यूजिक टीचर एट इंडियाज गॉट टैलेंट. और आपने कल वही गाने यहां भी गाए थे?
0: नहीं.
1: यहां कौन कौन से गाने?
0: केसरिया बालम.
1: वो थोड़ा सा एक लाइन सुनाएंगे?

अंग संग भगवान प्रसन्न प्रभ नानक पतते उदार। गुजरी की वार महला तीजा सकंदर ब्रह्म की वार की तुनी गावनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा। एहो जगत ममता मोवा जीवन की बिद नाहे। गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाए। नानक नदरी मन वसै गुरमुख सही समाए। महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदै मार। दूजे पाए सुते कवे ना जागे।